हर झुण आवाज रेडियोमान आवाज रेडियोमान 88.4 नेटवर्क मंगरवळू स्तासुला पारा दगशान मनमती परग्रमन चितस्तासो होहेगी हर लम्हा हर जय हर वक्त मंग स्तासु सरयू रेडियोमान 88.4 करक आवाज दस्तासो आवाज जुआन रंग अमन अमन।

0: आपकी पसंद, आपके एहसास और आपके लम्हों की खूबसूरती सब कुछ एक ही जगह, जहां हर प्रोग्राम सिर्फ आपके लिए। रेडियो अमन 88.4 करक, आपकी अपनी आवाज।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 करक, जहां मौसीकी, मालूमात, इस्लामिक प्रोग्राम और एंटरटेनमेंट शो हमेशा आपके साथ रहते हैं। रेडियो अमन 88.4 करक, आपकी आवाज, आपका एहसास।

trabajo para eso. Ya voy a hacer cama, ¿verdad? आपकी बहन टांग से और रखे यो जहान मनन है थैंक यू भाई सलाम राज भाई मी अच्छा मी हीरा करक से कैसे हैं आप भाई सवाल का जवाब है कि वो सारे परिंदे हैं जिसके सर भी होता है पांव भी होते हैं और पर भी होते हैं कभी कभी किसी परिंदे के सर पांव पर नहीं होते किसी की एक या दोनों टांगे भी नहीं होती है जी मैसेज कर लिया जहान माना वो जी सदफा दलत में जड़गी हाय कटिहर साहब मैसेज दे निम रोगला अच्छा उस पुरा रोलो वही सदफा दलत में

होय होय गाडी हेलचे वयचे सदा बदलता मे जडगी छा कहे छिदा चुप तरीके सर है न पड़े वे से वही दयार पकड़ी चे जमा दो जड़ा मार कर रद्रू में कटी खल से भी जहान मानना सलीम कटी खेल वही हाल लेस नरते में दुआ सलाम जी कटी खेल से भी जहान मानना के प्रोग्राम सरोवर में वही हर रोग या मासिकर ले बनाई के गम ताचे ने भी नमक सर ले बनाई के गम माद अखपल कलीना मऊ बसा या रास्ता द कलीना बाहर ले बनाई के गम हिकमत जी हिकमत यो जहान मरना थैंक यू सो वेरी मच एक्चुअली शुना वजह अस्सलाम वालेकुम जनाना हाल था बमे हेर से छे दलहा तो खावरो की केक दम मंडू ना और पीर इसरार एंड मतीउल्ला शेख गड़े ना यो जहान मरना दे टांग ना थैंक यू सो वेरी मच जी पीर से खावर मतीउल्ला से यो जहान मन मगो भाई सलाम भाई हाउ आर यू शो इज नाइस आंसर अच्छा वही का ना चेदा हो खुद खुद परिंदा वही छे आई एम बुशरा बुशरा हो रखे यो जहान मन ना चेतो से खबल जहान जिदा लड़ा उगलो मौत मुझे जॉब रोगलो रुसरा उर वे अखरे के जॉब दिखाओ वही छे हमोश तनहा आदे मो और जहन खुदा यही कना छे हर परिंदे मतलब सर पर पाव होते हैं और कि जी हमोश तनहा यो जहान मन ना वही छे अरी से यमा रास चाचू दस्ता दिनन कचरता विश पसदका के बखपल जान कुर्बानोमा सलाम में कबूल का बैजानी अरीशा खटकिया हिना अफरीदी दाओ क्यूट रुचि खान था हम सलाम अरीशा यो जहान मनना थैंक यू सो वेरी मच खुरक है और तासु सवाल वाला जवाब हम हर परिंदा दे जिसके सर पर पाव होते हैं मतलब हर परिंदे के सर पर पाव होते हैं और पाव भी अच्छा वही कहना छे गुललाई अमा दछांगना गुललाई यो जहान मनना खुरक है थैंक यू सो वेरी मच हम नेक्स्ट वही सलाम भाई टांग से अनस खान आपके सवाल का जवाब वो परिंदा है ये क्या जवाब हो गया अनस यो जहान मनना दे टांग ना वही जी भाई हगा हगा दिसंबर वाला सांग वाला गवा तासु शो के मोया वा और दलियो यो जला और दलियो और दा सांग छे पनेट सच कहू ब्याबा असलीकुम गुलालाई अमा द ठांग नाम अच्छा द ठांग का मिया लाल आई थिंक का बिल्कुल दाजू लिखला ना भाई गुलालाई और के जटेम रो तो मिलाव छी बी ही बे देता नशर का कादा का प्रोग्राम ने हो नो रे प्रोग्राम ने हो ठांग को लड़ दुन की मोसरा बताए हो हे जब सब तो भी आए इंशाल्लाह शो की जदा कोशिश का सही दा उस टाइम रो खत्म दा बिल्कुल नेट के तो से YouTube के वली गए लगा सांग जी सर्च करवाए दिसंबर सांग वाली का है और इस तरह करण हान वाली का है वाई साफ करण हान ठीक ना तरु बुशी और देसरा नेक्स्ट वाई जे सलाम भाई संग ये वाह वाह द बीजीएम वही छे भाई वसीले जन्नत हिन अफरीदी कहा सलाम कशफ यो जहान मनना रकीबो यो जहान मनना मलक से इंजीन ना वही छे करक बाजार ना ठोलो टांग अवरी दुन की करक अवरी दुन को दा स्पेशल सलाम नव अवरी दुन को दा और पुराने अवरी दुन को दा और सलीम कटी हेल्थ दा स्पेशल सलाम रकीब यो जहान मना रकीब हडक मेरी प्यारी बीटी अजवा बीमार है उनको खरक बाजार लेकर आया हूँ राज भाई हाय हाय हाय अजवा बेचा अल्लाह पाक ता पूता चली से तू नहीं देर की रकीबो परेशान के जमा मौसम चेंज कीजिए और दगा बड़ी बड़ी बीमारियां निरसी अजवा ट्रीटमेंट होगा आज वो बिल्कुल इंशाल्लाह

मैं हूँ असमा नूर वजीर फ्रॉम मंगल मेला। मैंने अपने बालों के लिए कई शैम्पू आजमाए लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला। फिर मैंने अमन रेडियो करक पर इकराम मामू का प्रोग्राम सुना, उन्होंने एश्मा आनियन शैम्पू

वेलकम मैनेजर साहब संग मैनेजर साहब जमा छोटा भाई काल कवलेज काल कवलेज आराम जी कमदनो मशूम दे हां ताहिर कॉस्मेटिक स्टोर दे ताहिर जान कॉस्मेटिक सेंटर तंगी एंड मंदनी रोड इकबाल मार्केट शकूर जापान बाजार कम खेंदन जमा आवाज हो रही पर शकूर के जापान बाजार दे नो अल द ताहिर जान कॉस्मेटिक स्टोर दे जमा दी खुगुर सर तमाम प्रोडक्ट मिलावी और भाई जी सलाम अलैकुम इनाम जान संग जात मरण जमा रो खुशाल होसे और ताहिर जान कॉस्मेटिक स्टोर दे हां दसर द इशमा तमाम प्रोडक्ट मिलावी शकूर जापान मार्केट की या कम बाजार दे जापान।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मन 88.4 करक, जहां मुसिकी मालूमात, इस्लामिक प्रोग्राम और एंटरटेनमेंट शो हमेशा आपके साथ रहते हैं। रेडियो मन 88.4 करक, आपकी आवाज, आपका एहसास। तारखाना दस ख्वाजे ख्वाजे सांदर अज लगा वाली दीदा सशाई बोरवे
1: एमएस जी दाहो मेरे डियो पो बाजूर से उखवासिये दो नो दा बेंड में तो वो 88.4 वर बंदे रोगलाल
0: तारखाना दा 88.4 सशाई दी
1: एमएस जी 88.4 में चेकला वाला गुवान नो दाहो करक रेडियो और बंदे रोगला दाहो दे करक रेडियो फ्रीक्वेंसी दो 88.4
2: हर यो अरमान बदी पूरा कम सका खार तलाड़म तालब बंगड़ी रोड़म
0: ब्याहवार साचे बाजोरा तालुटी चेवारो डियो जुनता जहां ओखला चिदा से खोजा खोजा परुगामिना ब्या जहां ओरवो
1: बिल्कुल एमएस जी और साचे सी वार डियो तुता हां ओखला तब बिल्कुल पा 88.4 बंदे खोजा खोजा परुगामिना ख्वाजे ख्वाजे सांदरे अवरे दाई से

आप सुन रहे हैं रेडियो मन 88.4 करक, जहां मौसीकी, मालूमात, इस्लामिक प्रोग्राम और एंटरटेनमेंट शो हमेशा आपके साथ रहते हैं। रेडियो मन 88.4 करक, आपकी आवाज, आपका एहसास।

0: Makanya mau kecil sarang gak wak.
1: Sarang gak?
0: Ya mau kena tarik apa ya belai itu lada.
1: Sasa, sahi, sahi. Matlu zak dor bandi kawai?
0: Nah, zan itu aku bas mau tak hos sarang zan lada.
1: Tink shwa, dera mana na lo ya khasashi call kawali, sahi da?
0: Okay, Allah Hafiz.
1: Okay, Allah Hafiz, dera mana na. Thank you, call kawali, dera, dera mana na. Shepur gaam ki di call bako. کسی کال بنے بولسو کو دیکھیم زنا دی السلام علیکم جی سو خبر کی کیوں زنا عائشہ بات کر رہی ہے بنو سے جی عائشہ کیسی ہیں آپ ٹھیک ہیں میں ٹھیک ہوں الحمدللہ آپ لوگ کیسی ہیں آپ کیسی ہے
0: ڈر لگتا ہے کل ریزلٹ ہے
1: کیا
0: कल रिजल्ट है इसलिए ना दुआएं कर रहे हैं इसलिए कल की क्या सब हमारे लिए दुआ कर
1: लो अच्छा चले बिल्कुल जरूर दुआएं इंशाल्लाह मैं करूंगा सबके लिए दुआ करता हूं और आप लोग भी हमारे लिए दुआ कीजिएगा ठीक है
0: हां ऐसी दुआ तो नहीं है अभी हमारे लिए हाथ उठाए के हाथ जरा करे हमारे बहुत अच्छे मार
1: अच्छा जी चले बिल्कुल दुआएं हैं आपके साथ और सबके साथ दुआएं हैं कि आप लोगों के मार्क्स अच्छे आ जाएं ठीक है हाँ तो मेरे ख्याल में कल रिजल्ट है ना
0: हाँ बिल्कुल कल है
1: अच्छा जी बनू बोर्ड का
0: हाँ बनू बोर्ड का
1: चले इसको मैं कंफर्म करता हूँ जी जी
0: चला कह रही थी कि घर से अभी से ये जो चीज है ना मारने की ये उठा ले कल अब लोग आपके और भाई की बहुत ज्यादा बेइज्जती होने वाली है अगर
1: अच्छा जी नहीं बिल्कुल बस हमारी दुआएं आपके साथ हैं अल्लाह करे कि आपके मार्क्स अच्छे हों ठीक है सो बस दुआएं हैं आपके साथ
0: हाँ दुआएं तो करेंगे तो हमारा हक है
1: जी जी जी मेरे। बिल्कुल ऐसा ही है बहुत शुक्रिया आयशा आपने कॉल किया क्या कहेंगे इसके अलावा प्रोग्राम में
0: प्रोग्राम तो बहुत अच्छा है हम बहुत सुनते वेट करते लेकिन ये टाइम जो है ना ये काम करने का टाइम है
1: अच्छा सालन बनाने का टाइम है रोटी तैयार करने का टाइम है
0: हाँ वैसे फिर अभी शो से पहले सारा ने मुझे सरप्राइज दिया क्या चावल पकेंगे मैंने कहा अच्छा गोंदने की छुट्टी हो गई
1: क्या क्या दोबारा बोलो
0: उसने कहा सारा ने
1: हाँ
0: कि आज ऐसा होगा कि चावल पक रहे हैं तो फिर आप अच्छा ना गोंदो इस वक्त वो काम मेरा होता है
1: अच्छा जी
0: छुट्टी हो गई छुट्टी
1: चले बहुत शुक्रिया आयशा आपने कॉल किया बनो से थैंक यू
0: हाँ, एक सॉन्ग प्ले तो कर
1: कौन सा सॉन्ग सॉन्ग ये मैं जितनी भी सॉन्ग प्ले करता हूँ ये सारे सॉन्ग आप सबके नाम है ठीक है
0: नहीं ये तो हमारे नाम के नहीं है ये तो आप खुद लेकर आए हो
1: नहीं तो आप लोगों के लिए मैं लेकर आता हूँ ना
0: ऐसे जी के नहीं संग मैं तो इसी में तुम्हें तंग कर रही थी ये सारे सॉन्ग बहुत अच्छे होते हैं वैसे मैं ज्यादातर सॉन्ग सुनती नहीं आप लोग लगा लेते हो तो फिर मुझे अच्छा लगता है
1: अच्छा जी चले बहुत शुक्रिया थैंक यू
0: अच्छा जी अच्छा ख्याल रखिएगा शरीफ भाई आपको सलाम इमेज जी भाई को भी सलाम ग्रेट मालिका को भी सलाम अजीज को भी सलाम
1: وعلیکم السلام تھینک یو سب کی طرف سے وعلیکم السلام ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ تھینک یو اچھا جی یہ تھی عائشہ بنو سے اور بہت ویرانے باتیں کر رہی تھی جی نیکسٹ السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو خبر کی کم زینا
2: جی میں تارا بات کر رہی ہوں کرک سے
1: تارا بات کر رہی ہے بنو سے کرک سے
2: نہیں سوری کرک سے
1: اچھا اچھا جی تارا کیسی ہیں آپ ٹھیک ہیں
2: ٹھیک ٹھاک لگ شکر ہے آپ سے آپ کیسی
1: ہیں الحمدللہ میں بالکل ٹھیک اچھا یہ بتائیے گا آپ کی امی کیسی ہیں کچھ دن پہلے آپ نے کال کی تھی

0: प्रोग्राम में।
1: ठीक है, थैंक यू तारा खान, आपने करक से कॉल किया। क्या कहेंगे प्रोग्राम में जल्दी जल्दी?
0: अच्छा चलिए, आप जल्दी में हैं तो जल्दी जल्दी में।
1: नहीं, टाइम कम होता है ना, इसलिए जल्दी में होता हूँ मैं।
0: हाँ ना, तो बस बंदा क्या कह सकता है जल्दी में।
1: जी,
0: जो हमने कहना होता है वो आप जब सलाम कर लेते हैं सारा कुछ हम भूल जाते हैं।
1: अच्छा
0: जी,
1: तो इसमें मेरा क्या कसूर?
0: आपका ये कसूर है ना, आपका रोज याद है तो हमें डर लगता है।
1: ठीक है, थैंक यू तरहान, बहुत शुक्रिया।
0: चलिए, इस टाइम जितने भी सिस्टर मेरे प्रोग्राम से सलाम, सबको सलाम। कंफ्यूज हूँ।
1: वालेकुम अस्सलाम, सब की तरफ से वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, आपका सलाम पहुंच गया सबको।
0: अच्छी सही बात सुने
1: जी।
0: अब हम काफी टाइम हो गया ना, आपने ये वाला सॉन्ग प्ले नहीं किया, दिल लगाया था दिल लगी के लिए।
1: अच्छा तो चले चले, मैं सर्च करता हूँ, अगर मुझे मिला तो मैं जरूर प्ले करूंगा लास्ट में। ठीक है,
0: चले ठीक है, ओके अल्लाह।
1: ओके अल्लाह, थैंक यू। तो बहुत शुक्रिया, ये थी तारा करक से, पहले कह रही थी कि बनो से, फिर बोल गई वो कह रही थी कि नहीं करक से मैं बात कर रही हूँ, बनो से नहीं। चले बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया करक से, और नेक्स्ट कॉल प्रोग्राम में शामिल करते हैं, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, वालेकुम अस्सलाम, खैर खैरियत, सो खबर है की क्यों जरा आवाज जिक्र कीजिए, आवाज जिलर की उचत का सो खबर है कभी कर रख ना। हेलो, अच्छा रिफत खबर है कभी कर रख ना, रिफत बखेर अगली कर रख ना, आवाज खरूब तो बेले सरंगी आवाज बने देना पुएश। सॉरी दोबारा क्या लोग ठीक है, डेरा मन ना। ओके लाफिज, यो जहान बना, सॉरी खफा नशे आवाज है मोहता सही नरदरमी, और टाइम हम कम देखे ना, दे दो बजे आवाज है मोहता सही नरता, नो दोबारा हाँ ट्राई के वाले शे कसी कारवाने से बलसो को दिखे ना दे। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम,
1: सुख खबर है कि जना शाफेसल बन गुल न पखीर रागले सरंगे शाफेसल से
2: इरदा अल्हम्दुलिल्लाह तरीक भाई तो गया
1: बिल्कुल ठीक ठाक और सुख बिल्कुल सही हूं तो से सही
2: इरदा अल्हम्दुलिल्लाह शुभ रोबारी खरीना दी माशाल्लाह बहुत गर्मी है खत्म हो ले दो
1: शा माशाल्लाह बिया घोड़ेरा शाह खबर दो छे बन गुल से गर्मी खत्म शुभ दो यार खबर बिल्कुल ठीक तो खबर दा बनगुल मजदीगराई मुचर तक वो न लीदा
2: माशाल्लाह
1: बस चरत के वेंशला बनगुल चक्कर लगवी दा मजदीगराई।

हाँ जी बिल्कुल संधरा तो सुबोर भाई आओ बिल्कुल अतरणी से संधरा तू कहना अतरणी से संधरे नवे सरवे तो उस नजर इजाजत हाँ उखल

0: मैं हूँ असमनूर वजीर फ्रॉम मंगल मेला। मैंने अपने बालों के लिए कई शैम्पू आजमाए लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला। फिर मैंने अमन रेडियो करक पर इकराम मामू का प्रोग्राम सुना। उन्होंने एश्मा आनियन शैम्पू के बारे में बात की। जब मैंने मंगवाया और इस्तेमाल किया, माशाल्लाह उसने मुझे कमाल का रिजल्ट दिया। मैं सब बहन भाइयों को ये मशवरा देती हूँ कि अगर आप लोग अपने बाल मजबूत और सेहतमंद बनाना चाहते हो तो आज ही अपने करीबी दुकानदार से एश्मा आनियन शैम्पू मंगवाए। एश्मा आनियन शैम्पू सेहतमंद और चमकदार बालों का राज।
1: हर कदम
2: कल की याद है, आज के लम्हे और आने वाले कल की उम्मीद, सबको जोड़ती एक आवाज़, रेडियो अमन 88.4 तरफ हर वक्त अब

खुश खबरी, खुश खबरी। हुज़ैफ़ा कंपनी वाला शिफा तेल का बड़ा दावा, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में शिफा तेल का जवाब आपको नहीं मिलेगा। शिफा तेल अरब मुमालिक, यूरोपी मुमालिक, मलेशिया, चाइना वगैरह में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। शिफा तेल पुराने गंजेपन के लिए नहीं बल्कि अभी गंजे हो या गंजे हो रहे हो तो शिफा तेल के इस्तेमाल से बाल गिरना बंद हो जाएंगे, नए बाल उगना शुरू हो जाएंगे, बालों को गन्ना लंबा करता है, खारिश, खुश्की, सिकरी खत्म। मर्द औरत दोनों के लिए यकसा मुफीद है। हुज़ैफ़ा कंपनी शिफा तिल, पिशावर, बन्नू, लकी, करक, डीआई खान, खैबर पख्तूनख्वा, पिंडी, इस्लामाबाद के अक्सर जनरल स्टोर और बेकरियों में दस्तियाब है। नवी दरियाफ शवी ददवा थोरो निशान वाला हुज़ैफ़ा कंपनी शिफा तिल चिसड़ाए वक्त नए गंजाए नवी ओस ओस गंजे शवी भी याद सर वेख्तान गुरजीगी نو اغا سڑای چی سو رزی شفا تل پا پل سر با نی مالش کی نو دادا بسر بو دوبارا نوی وشتان پیدا شی شفا تل وشتان غرزول بندوی وشتان گن او اجد کوی دی سر خارش خشکی پینا پخا هم ختم کوی زننا مردنا دوارو دا پارا برابر پیدا مند مزید معلوماتو دا پارا پدی نمبرو رابطہ کولی شی سفر 331 397 36 36

0: मैं भी कुछ प्रोडक्ट हासिल करना चाहती हूँ फ्री में, अगर आप मेरे से सवाल करें तो।
1: अच्छा सही है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर। टपाओ बदर जी कहना पुख्तो की
0: बात सुने।
1: जी जी,
0: वो आपने मेरी कजन अनिला से भी क्वेश्चन किए थे तो आपने उनको गिफ्ट दिए थे।
1: अच्छा वो अनिला आपकी कजन थी? बिल्कुल दी थी, वो तो लेगा 5 प्रोडक्ट। खैर है, 6 उसको दे दूंगा, 1 आप ही ले ले, सही है।
0: नहीं आप मेरे मुझे लदा से दीजिएगा।
1: कौन सा प्रोडक्ट आपको चाहिए ये बताओ आप?
0: फेस वॉश एंड जो स्प्रे है।
1: फेस वॉश और स्प्रे 2 प्रोडक्ट चलो मिल जाएगा आपको बस।
0: जी ये पिंडी से कहाँ पे मिलेंगे?
1: पिंडी पे मिलेंगे, ये जो तरनोल नहीं है, तरनोल वहाँ पे मिलेगा आपको, सही है, कुरैशी ट्रेडरी के नाम है।
0: तो ये काफी दूर है हमसे।
1: तो काफी दूर है, तो पिंडी मैम इंशाल्लाह आपको एड्रेस बता दूंगा, सही है, बेगम हो जाए आप।
0: जी ठीक है,
1: ओके, थैंक यू, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। ओके अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, थैंक यू, ज्यादा मना खुशहाल हो।

हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रिफतुल्ला, डेरा इस्माइल खान, नवल मैसूद, जनरल स्टोर, वांडा बलोच, इशमाल प्रोडक्ट दस्तियाब, स्प्रे और सब चिकन दस्तियाब। हाँ, वांडा बलोच के मुख्य इंतजाम आवाज़ है, उड़ी उड़ी ये खान के तमाम प्रोडक्ट मिलाई हुई।

पास आपका व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल नंबर पे कॉल किया करिए भाई साहब। जमील खान लंडीवा भाई अस्सलाम वालेकुम, मजी से आवाज से बिल्कुल ओके थी। हाँ चीफ ऑफ लंडीवा दोनों मन लेकिन लगता है और बड़े खराब खराब बोला रो मैं कम दिनों लंडीवा तजी। हाँ दोनों ज्यादा मनना।

अस्सलाम वालेकुम इनाम भाई, क्या हाल है? मैं बड़ा फैन हूँ आपका, प्रोग्राम के लिए क्यों नहीं आ रहे? अस्सलाम वालेकुम भाई, बलवाशा प्रोम्बन उत्तर रेडियो मंदिर आवाज बिल्कुल क्लियर है मेरी तरफ से लोबना को। अस्सलाम वालेकुम, सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू हूं। स्तरगत आसमान बशी स्पोगमय बशी और नमर बशी टोल चिदायो जेकली ताद हुसन बराबर वशी ताद जसो कुआई ची खैस्तनी बदरंगी ताद दे जमा पसरुग उगुरी चिदरत उगुरी खबर वशी। वेलकम नियामी महक दबनो न दवागाने सलामुने की वीडियो रजिया तमनो थैंक यू खुशाल हाउस। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल एंड क्यूट इनाम मामू संगई प्रोग्राम दे सम हद दे आई एम बुजुर्ग ब्यूटीफुल शंकर अबुजर शंकर तो बराजी खान रिशा शंकर अबुजर आवे मैं से पर तो कुछ कार्ड दरो लेगे हां पदरा रवान 25 तारीख बाद इंशाल्लाह रागन साहब की हाजिरी दा प्रोग्राम डिर ज्यादा मजे के वी नाम भाई ता सलाम इशमा इस्लामुद्दीन यम साबिर दे कोट कटना दुआगाने सलाम नु डिर ज्यादा मरना वाई चश्मा जिंदाबाद जबरदस्त प्रोडक्ट दी मलाला फरियादी वाई च टोलते में सलाम ता सलाम वालेकुम सलाम आई एम गुलजमान खटक द करंगना ता सलाम वालेकुम सलाम नसरुल्लाह दुआगाने सलाम नु के डिर ज्यादा मना फैज अफरीदी यम द बेस्ट आरजे कल में मिलाऊ शो टपे दर सर गौमा।

0: It's 10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amar. Jwan Rang Amar.
1: जहाँ मिले आपको तफरी,
2: जहाँ मिले आपको मालूमात
1: और जहाँ गूंजे सिर्फ आपकी आवाज, दिन हो या रात,
2: रेडियो अमन 88.4 करक हमेशा आपके साथ।
1: रेडियो अमन 88.4 करक, अपनी आवाज, अपनी पहचान।

के खूबसूरत बन जाए जब साथ हो एक खूबसूरत आवाज रेडियो अमन 88.4 का रख जहां मसीह की मालूमात और एंटरटेनमेंट सब कुछ आपके लिए।